गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तीसरी वेर है और तीसरी वेर नंगी कृपान है, खून दे नाल लथपथ है और तीसरी वेर भाई हिम्मत सिंह जी प्यारा, उदू बाद मोहकम सिंह जी प्यारा, साहिब सिंह जी प्यारा। जे मैं सारिआं दा डिटेल च ना थौं पते अर्ज करां ते समां लंबा हो जाएगा। एक आखिरी दो मिनट की चीज कह के तो खिमा दे जाचक होना है। और जिस वेले पंज नितरे पंजां तो बाद कुछ समा कलगी वाले पातशाह आए ना, कई घबरा गए, कई तो भज गए, कई तो लंगर च जा बड़े, और जेड़े जदों काफी समा ना आए तो पिछे वेखण लगे कि पिछले पास ना आ जाण कलगी वाले पास। कुछ देर तो बाद आए तो पंजे ही नाल ने, जदों चेहरिया ते नूर वेख्या गुरु की बख्शिश हो गई ना, फिर सारे काले पै के मैं क्यों नहीं उठे। उदू बाद अमृता बाटा तैयार किया, अमृता बाटा तैयार करके पांच घुट इनू पीण नू दिते, इहदी अंतरीप आत्मा बदली, पांच छटे इहदियां अखां विच मारे, इहदी तकड़ी सम कीती। इहदी तकड़ी किसे गरीब नू वेख के लाल ना होवे और किसे तकड़े नू वेख के नीवी ना पावे, इहदी तकड़ी विच वेख पराईयां चंगियां मामा धीआं भैणां जाणे वाली अवस्था लियांदी। पांच चुले एवे दिमाग विच पाए, एदी रहनी बदली, एदी कहनी बदली, एदी खुराक बदली, एदी पोशाक बदली। और उस तो बाद पांच ककार दिते, ककार कड़ा जेड़ा है, कड़ा कहे चोरी आदि घात को ना हथ लामी। कई वीर पुछ लेंदे है वे कड़ा पाउण दा मतलब की, भाई साहब भाई संतोख सिंह जी लिखते ने वे कड़ा कहे चोरी आदि घात को ना हथ लामी, कच कहे जती रौ त्याग पर नारको, गंगा कहे टुटे रोमा वांग तज पाप निंदे है, कहे कृपान कट लो मोह हंकार को, केस कहण साडी न्याई पाल सत संग धर्म, भई अमृत कहे अमर हो जा पाके शब्द सार को, ऐसे पंजे कके जिन तार लै संतोख सिंह पावे गंग सिंह साहब के ददार को, ते कलगी वाले पातशाह आपे गुरचेला।

क्यों प्यार है, क्यों गुरु दे चरण तोतो के पीड़ नूं मन करदा है। ए पवित्र शब्द सतगुर अपने सुनी अरदास, कारज आया सगला रास। जब सतगुर दे चरणा में अरदास कीती, फिर सतगुर ने अरदास सुन। जेड़ा अरदास सुनता है, जेड़ा अपने सिख दी लाज रखता है, फिर ओदे चरण तोतो के पीड़ नूं क्यों ना मन करे। कई कहंदे ने अरदास कीती पर अरदास पूरी नहीं हुई। पर गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा महावाक है, बिरथी कदे ना होवई जन की अरदास। अरदास कदी बिरथी नहीं जांदी। श्री आनंदपुर साहब हजारा संगतां दर्शना वास्ते आंदियां हन। इन्हां संगतां दे विच एक पति पत्नी और एक इन्हां दी छोटी बच्ची वो भी आए हन। एक महीना श्री आनंदपुर साहब रहे। इस बच्ची दे माता पिता ते चले गए पर ए ना गई। ये धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे महल माता साहब देवा दे कोल ए बच्ची रहन लग पई। समा बीतिया। वसाखी वाले दिन केसगढ़ दी पवित्र धरती ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अमृत दी दात दित्ती। इस बच्ची ने भी अमृत छकिया। पहला नाम बसंत लता सी, अमृत छकिया ते बसंत कौर बन गई। श्री आनंदपुर साहब दे किले नूं जिस वक्त घेरा पिया और गुरु साहबां ने आनंदपुर साहब दा किला जिस वक्त छड्डिया, सरसा नदी पार कीती, सरसा नदी पार कीता, गुरु साहबां दा सारा वही इत्थे आके विछड़ गया। तां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वड्डे साहिबजादे ते 40 दे करीब सिख इक पासे, तां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे छोटे साहिबजादे अते माता गुजरी इक पासे, सारा परिवार और सिख विछड़ गए। ए समय जिहड़ी ए बसंत कौर सी, इहदे हथ विच भी नंगी कृपान है, कमर कसा कीता है। ए भी अपने सिंह वीरां दे नाल दुश्मना नाल लड़दी हुई नदी पार करदी है। ठोकर लगी, थले डिग पई। सिपाही पकड़ के समुंद खान दे कोल लै गए। समुंद खान ने कहा, बसंत कौर, ना तेरा कलगियां वाला इत्थे आना, ना कोई तेरा सिख भरा, मेरी बेगम बन जा राज करेंगी। पर बसंत कौर ने कहा, समुंद खान, मैं कलगियां वाले पिता दा अमृत छकिया, मैं प्रण कीता दुनिया विच मेरा कोई पति नहीं होवेगा, अपना जीवन कलगियां वाले पिता दे लेखे ला दिता है। बसंत कौर नूं कैद कीता गया, तसीहे दिते, लालच दिते, पर बसंत कौर डोली नहीं। अखीर एक कैद खाने विच बसंत कौर नूं कैद कीता गया। समुंद खान उस कैद खाने विच आया। बसंत कौर नूं कहन लगा, बसंत कौर, तेरा कलगियां वाला गुरु चमकौर दी गढ़ी विच मारिया गया, हुण तेनूं बचाण वाला कोई नहीं। समुंद खान अगे होया, बाहां फैलाईयां हन बसंत कौर नूं पकड़न वास्ते, पर बसंत कौर थड़े तो इकदम मुठ के खलोई, गर्ज के कहन लगी, ओ दुष्टा, परा हो जा, आओ देख, मेरा कलगियां वाला पिता आ गया। जद कहा, आओ देख, मेरा कलगियां वाला पिता आ गया है, उस वक्त बसंत कौर नूं प्रतख दर्शन
उस कैद खाने विच हो रहे हैं। ते समुंद खान मानो पत्थर दा बुत हो गया, हिल जुल नहीं सी सकदा। फिर इसने बेनती की थी, बसंत कौर मैनू बख्श दे, मैं भुल गया। ते बसंत कौर ने कहा, खिमा मंगनी है ते मेरे कलगियां वाले पिता कोलू मंग। फिर ए समुंद खान ठीक होया, बसंत कौर दे पैरां ते मत्था टेकिया, एक महीना कोल रख के सेवा कीती। जद धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज लखी जंगल पहुंचे, फिर बसंत कौर नू 100 सवारां दे नाल सतगुरां दे कोल भेजिया। सास यह है अरदास और गुरु दे प्यार दी शक्ति। आओ आपां भी गुरु ते भरोसा रखिए, हर दुख वेले सतगुरु साडी भी इस तरह सहायता करनगे।

दुर्योधन। एक बारी प्यार नाल बोलिए सतनाम, मन बिरतियां नूं एकाग्र करे। भाई साहब लिखते हैं, फिटका होके बोलिया दुर्योधन, की प्यासी नौकरां दे घर। भाई साहब लिखते हैं, आ

राजा बोली थे बोली जा रही। ठीक है भाई, हुण मैं बोला भगवान ने आख्या, हुण तू गल अपनी पूरी कर ली, हां हुण मैनू जवाब दियो। भगवान ने आख्या हुण तू सन्मुख होके सामने होके मेरी गल सुन, तेरे घर विच सबो कुछ सब, पर एक गल मैनू नहीं दिसदी, जिथे एक गल ना होवे मैं उथे भुल के भी नहीं जांदा। कि भाई साहब लिखते हैं

पार्स पेट पर्स करो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुर सिर हत्तर हो कसमल जा हर घनन कसमल जा हर घनन

गुरु अमर गुरु श्री सत कल जुग राखी पत अग्न देखत गत चरण कमल दास चरण कमल दास सब विद्मान्यो मन तभी पयो प्रसन्न गुरु जोग तख्त दियन गुरु रामदास नाये रामदास सरी नाये रामदास नाये रामदास सरी दस सरी दस सर नाये रामदास सरी नाये रामदास सरी हम अब गुण बार

रघुवंश तिलक दशरथ कारी मन बाछे ताकी शरणं। रघुवंश तिलक दशरथ कारी मन बाछे ताकी शरणं। सतगुर सेव अलखगत जाकी।

नाइए रामदास सर जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटाजू देख कियो फिरत अदास को सितन सतगुर सुख पयो।

अचानक राजे नु जाग हुई। राजे ने की तके रानी वाला पलंग खाली पे। भाई साहब भाई गुरदास जी लिख दे रानी वाला पलंग खाली, थोड़ा समा राजे ने उड़ीक की थी। जिस वेले राणी नू राजे ने नहीं तकिया, भाई साहब जी लिखते हैं राजे दे मन च बड़ी है। अद्धी रात दा समय राणी किधर चली। राजा उठिया, महल दे अंदर राणी नू लभण लग गया। सारे कमरे वेखे पर राणी दिस ना भी, मन विच वरत गई है। तो प्यारी सास संगत, राजे दे मन विच राणी दे मतलब चंगे ख्याल भी आन लगे, मंदे भी आन लगे। राणी दा मेरे नाल प्यार तो बड़ा है, पर अद्धी राती राणी दा महल विचों गैर हाजिर होना, ए तो मैनु धोखा दिंदी। इन्हां सोचां ते दलीलां राजा अपने पलंग ते बैठा लेट गया, नींद आ गई। दिन चढ़ेगा, जो राजे ने अखां खोलियां की तकिया, राणी अपने पलंग ते लेटी हुई। राजे ने आवाज दिती, राणीए उठ। राणी उठी, राजन हुक्म करो। राजे ने पहला सवाल किया राणी ते, के राणी सच दस तू राती किथे गई सी। अधी रात तू गैर हाजिर सी, किथे गई सी। राणी सोचन लगी, जे मैं सच दसदी हां तां जिथे मैं रोज जांदी हां, हो सकदा है राजा रुकावट पा दे। तो राणी रोज किथे जांदी सी। आई साहब जी लिखदे, साध संगत मिल गाम दे, कराती जाए सुने गुरु। रोज सत्संग जांदी सी, महापुरुषां दी संगत रात नू जांदी सी। रोज डेली नितनेम बनिया होया सी, चाहे मीं होवे चाहे हनेरी, कैसा भी वैदर क्यों ना होवे, राणी तारा रोज नितनेम नाल जांदी सी। सोचिया जी सच बोलदी है तां हो सकदा है राजा सत्संग तू रोक दे, पर मेरे ते प्राणा दा आधार है सत्संग। मेरे जीवन दा निशाना है गुरु दी बाणी। रोटी मिले चाहे ना मिले, पर मैं सत्संग तो बगैर नहीं रह सकता। ए प्यार दी निशानी है, ए प्यार है। राणी सोच, राजे ने फिर किया, राणी बोल तू राती किथे गई सी। जे झूठ बोलदी हां तां पति परमेश्वर है, स्त्री वास्ते दुनियादारी दा सब तू वड्डा रिश्ता पति है। जे सच बोलदी हां तां सत्संग तू विछड़दी। पर राणी ने सोचिया मेरा जीवन सत्संग है। जिस तरह मच्छी पानी तो बगैर नहीं रह सकती, सत्संगी सत्संग तो बगैर नहीं रह सकता।

जिस दा मन उस परमात्मा नाल लगा होवे वो माया नाल किवें जोड़ सकदा आगो सतनाम श्री का कौन है बच्चा ये वो बच्चा है जिसका उचारिया होया एक शब्द तुसी बड़े प्यार नाल

दर्शन कहते हैं। हे रविदास, इस आस पे बैठा है कभी ना तेरे दर्शन हो गए। सा संगत जिदे मन में इन्ना वैराग हो गए, वो फिर दुनिया दे राग रंगा वाल तन दौलत वाल कि

भगत जी की शादी हो गई पर सत्संग भागा दी गल घरवाली ऐसी मिली जे भगत रविदास कहते ने दिन है ते घरवाली अगों हाथ जोड़ के कहती है सत वचन स्वामी जी दिन है जे भगत जी कहते ने रात है ते घरवाली कहती है सत वचन रात है भगत रविदास जे अमृत वेले तीन बजे उठते हैं ते घरवाली उन्हां तों पहला उठ के इशनान करती है और भगत जी वास्ते पानी भर के रखती है इशनान वास्ते स्वाहिक विचारे सत्संगत नाम भी तां जपिया जा सकता है जे घर विच सलूक होवे हुण एक अमृत वेले उठ पवे ते दूसरा आके ना आप सौंदा है ना सानू सौण देंदा है सवेरे कल्पना पै जाए ते उहने नाम की जपणा आपको सतनाम सिंह एक गल याद आई कबीर साहब घर बैठे सन अपनी घरवाली माता लोही नूं कहण लगे लोहिए अग बाल घरवाली कहती सत बजे अग बाल दे फिर कबीर साहब कहते ने उत्ते कड़ाई रख सत बजे फिर कबीर साहब

बचा रहे हो। पर माता पिता और दुखी हो गए। अगे ते पुत्र दानी सी, अगो नू भी दानी निकली, अगो सतनाम सिरवाई। एक दिन माता पिता ने कहा, रविदास तेनू पाले और तेरा ब्याह कर देता। सोचे असी तू कमाई करके सानू खवाएगा, पर तू ते दानी, असी तेनू कमा के नहीं खवा सकते। इस तरह कर, जो समान चाहिए ले ले ते वर।

गया था, मिठाई मुझे नहीं थी, देखा मिठाई हालत ही हो गई। कई कई दिन भगत जी भूखे भी रहे पर भक्ति नहीं छड़ी। इना दिना गंगा ते अपीज नक्षत्र का मेला लग्या करता सी। एक दिन घरवाली ने कहा, भगत रविदास नूं भगत जी हजारां लोग गंगा इशनान करन जांदे ने, मेरा भी चित करदा है असी भी गंगा इशनान करन चली। भगत रविदास कहन लगे, भरिए लोके सब तो वड्डा तीर्थ

हर कोई गुरमुख भी नहीं हो सकता। अब माता जी में मर्जी कह देने हैं, आओ गुरमुख हो गया। आजकल तो लोग दोहरी जिंदगी जीते, उत्तों कुछ होर ते बाहरों कुछ होर। उत्तों दिखावा इना के देखने वाला ये कवे कि ए दे वर्गा कोई गुरमुख है, ए दे वर्गा दानी कोई, ए दे वर्गा पुन्नी कोई। ते अंदरों अंदरों लालसा ऐसी कि जे वास चले ते सारी दुनिया लुट के खा जाए। इथों तक देखे है कि लोग धर्म के नाते भी ठगिया कर दी, थोड़ा जहा दान पुन कर दिता लोगों दिखाने वास्ते ते बाकी सारा कुछ आप सामभ ली। वड्डिया वड्डिया उगराइया भी होंदिया, थोड़ा जहा लोग लगाते ने धर्म के नाते ते बाकी आप सामभ लें। धार्मिक स्थाना का भी हाल ते धार्मिक

बड़े समय बाद ओही महात्मा फिर आए, पगर दी ओही हालत ते पुछ देने रवदास, मैं तेरे एक पारस दे गया सी ते भगत जी कहते ने मैनू ते पता नहीं जिथे रख गए सी उथे पिया होवेगा, आखो सतनाम सिद्ध। वो पारस दरवाजे दे नाल खोलिया, पारस हाथ विच पकड़िया ते वो महात्मा कौन है? वो महात्मा और कोई नहीं, आप हरि परमात्मा है, आखो सत

पगजी ने मुंह परले पासे कीता ते ओ महात्मा बैठे बैठे आलोक हो गए। पगजी कहंदे ने उधर ते कुछ भी नहीं, जब सामने देखिया ते ओ महात्मा आलोक हो चुके। हुण मन वैराग नाल भरिया, ओए मना ओ आप तेरी चुकी विच आया पर तू पहचान ना सके। मन वैराग नाल भरिया ते भगत रविदास जी फिर ये शब्द

जिससे मैं महार मांगे। उस दिन तू भगत जी अमृत वेले जद उठते ने अपना आसन झाड़ते ने पांच सोने दिया मोहरा निकल दिया उन्हां मोहरा नूं ठीकरियां मिट्टी समझ के एक पासे सुट देते। जद मोहरा का ढेर

सोने दिया मोहरा ने मैं अपनी खुशी नाल तैनू दे रहा इहदे विच मेरी खुशी है। सवेरे एक सेठ आवेगा तेरे सोने मंदिर मकान बनाण वास्ते इनकार ना करे। एकदम भगत जी उठ के बैठ गए, घरवाली नूं उठाया ते सारी गल दसी। घरवाली ने कहा भगत जी जे परमात्मा की इच्छा है फिर सानू इनकार नहीं करना चाहिए। दिन चढ़िया एक सेठ आ पहुंचे मोहरा दियां थैलियां भरी मथा टेक के कहन लगा भगत जी मेरे घर पुत्र कोई नहीं सी। मैं सुखना सुखी जे मेरे घर पुत्र होवेगा ते रविदास भगत दे मंदिर मकान मैं आप बनावांगा। उस परमात्मा ने मैनू पुत्र बख्शे है ते मैनू हुण आके आ दियो मैं सेवा कर। सोहणे मंदिर मकान बन गए। भगत रविदास की जय जयकार होण लग पई। पर सा संग इस समा केड़ा सी एक भी कौड़ा सच है ओ समा सी जद कोई नेवी जात दा मंदिर नहीं सी जा सकता, कोई पूजा नहीं सी कर सकता। उस वेले दी कथा। अज भी कई स्थान ऐसे हैं जिथे नेवी जात दे स्टूड का

कभी अपने बारे सोचे है तू है कि हड्डियां का पिंजरा दुआले मासन बैठे हैं और दुनिया भर का गंध तेरे अंदर है और तू अपने आप को समझता है कि मैं पता नहीं की कुछ हो गया। एक गल याद रखना, जो आप गंदगी बाहर देखते हैं कि बाहर नहीं आई ये इंसान से की थी। भगत जी कहते हैं दुनिया भर का गंध तेरे अंदर ते तू अपने आप को बड़ा कुछ समझते, तेरी सिर्फ इतनी कहानी है हड्डियां का पिंजरा है दुआले तेरे मास लपेटे है ते वेचे

माया मन तोल करदा बुजुर्ग मर जाए ते दिया पुत वो अंदर मन विच सोचदे ने हुणे वड्डा ते मर गए हुण ये देखिए कि साडे हिस्से विच की आंदा आखो सतनाम श्री अवर मरत माया मन तोल मन विच ए तोलदे ने कि हुण साडे हिस्से विच की

पूज्य मंदिर सोहना घर सुंदर नारी सोहना रूप सोहनी कारवाई इस शब्द को यह ना समझना कि दुनिया तिया पुत्र घर बार छड़ के बह जाइए ने बाणी यह कहती है कि सब कुछ है पर इस सब कुछ ना समझ क्योंकि सब कुछ परमेश्वर का नाम ये चीजा ते कदी भी तेरा साथ छड़ जाणगियां पर परमात्मा वो कदी साथ नहीं छड़ता इन चीजा विच रह के जिहड़ा

这一小子说ये कोई शब्द है सुनया भी मन करके और मन विच वस भी जो पेटा लेके आए सी हजारा रुपए हजारा का समान भगत जी के चरणा ते रख के मत्था टेकया गुरु दिखिया लेके चेली बड़ी एक महीना चाला बाई बनारस रह के वापस चितौड़ चली एक शब्द जिसने वैरागी कर दिता और साध संगत कई बारी देखते हैं लोग बुढ़े हो जाते ने बाणी पढ़ते सुन पर मासा भी असर ओही झूठ ओही कपट ओही दोहरा जीवन ते कई बारी लोग कह भी देते ने यार सारी उम्र हो गई तेरी पाठ पूजा कर दे गुरुद्वारे भी बड़ा जाना है मंदिर भी जाना है पर तेरे जीवन में तब्दीली हुई ओई छल कपट कारण की है सुनया ते है पर ना मनया ते ना ही कभी भरोसा हुण राणी ने एक कोई

समय ना नहीं कि शब्द पूरा पड़ी शब्द सुने राणी का अता गुस्सा ते जांदा रे ते फिर राणी ने कहा चलना भाई कुछ ब्राह्मण आए ने बनारस तो कहते ने तू चमार नु गुरु बनाए राणी कहन लगी चलो मेरे नाल दरबार आके उन्हां पंडतां नु कहा जिन्नी चुक सको उन्नी धन दौलत दे आगे सच दसो सच्चा भगत कौन है आए माया वास्ते सन जद माया मिली ते जिहड़े पहला निंदिया करदे सन ओही कहन लग पए भगत रविदास वर्गा ते भगत ही होई नहीं आखो सतनाम सिंह होए माया जी मिल गई खैर गल कोई भी होई असर यह होया कि राणा भी श्रद्धालु बन गए भगत जी की चितौड़ बुलाया कई दिन सत्संग होता रहा और अज आखिरी दिन बड़ा वड्डा पंडाल लगा राणी का सदा तो फिर कौन ना आवे हजारां लोग पंडाल विच

मैं बड़ा ऊंचा, मैं तो हमेशा यह भी कहना कि मैं बहुत नीवा हूं। मेरा बहन उठना भी नीवियां दे नाल पर एक गल से।

कुछ पछतावा कीता कि हे निरंकार मैं संसार ते आके जो कुछ करना सी ओ कीता नहीं। मैं मोह माया दी नींदर विच सुता रहा, मेरा सौ जागे हौन इस बार सोवा। इस संसार दे पंज झगड़िया विच पै के मैं सारा जीवन अपना एवें व्यर्थ गवा लिया। सेजे रमत नैन नहीं पेखो, हे परिपूर्ण परमात्मा तू तो मेरे हिरदे रूपी सेज ते जाग रहे, पर मैं मोह माया दी नींदर विच सुता ही रहा, कदे तैनू वेखण दा जतन ना कीता, कदे तेरे चरणां विच जुड़ के ओ महान रस ना मान सकिया, जिस नाल मेरा लोक परलोक सौरदा सी। इसलिए मेरी मत बहुरी हो गई।

पंच को झगड़ा, झगड़त जन्म गवाया, संसार वल निगाह मार के वेखिए, बस इना पंजा झगड़िया विच ही मनुख सवेर तो शाम तक और रात तो सवेर तक इना ही झगड़िया विच पिया होया। इसनू परमेश्वर दा सिमरन भोली गया है। इसे लई गुरु तेग बहादुर साहब कहिंदे न, अब मैं कौन उपाय करूं, जे बिद मन को संसा चूके पवनिद पार परो, जन्म पाए किश पलो न कीनो ताते अधिक डरो। इसलिए कबीर जी कहिंदे न, पाई सुख तां उना ही पाया है जिन्हां ने जपया श्री वाहिगुरु। तो इसलिए झूठी माया सब जग बांधिया, झूठी माया ने तां सारे जग नू बनिया, पर रब दे प्यारे अमृत वेले जाग के नाम जपदे हन, सेवा सिमरन करदे हन, अपना जीवन सफल करदे हन। सेजे रमत नैन नहीं पेखो, ए दुख कांस्यों कहोरे, मेरी मत बौरी मैं राम बिसारियो, किन बिद रैन रहोरे, बाप साब का करे लड़ाई, माया सद मतवारी, बड़े पाई के जब संग होती तब हूँ ना है प्यारी, कहत कबीर पंच को चगरा, चगरत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधिया। कबीर जी कहंदन, मैं राम रमत

मैं तेरे दरदा भिखारी हां मंगता हां आरता मैंने मंगता जिथे आरता का अर्थ दुखी है उथे इसका अर्थ मंगता भी है। भगत तन्ना जी शब्द रम करते हुए कहते ने गोपाल गो मैंने पृथ्वी पाल मैंने पालना करने वाला सर्वशक्तिवान।

से पाऊं जो तेरे रंग रात से स्वामी दिल का जन्म मर दुख नाता तेरी बख्श ना मिटे कोई सतगुरु का दिलासा जिस

प्यार वालिया ने की कुछ नहीं की, किवें मना लिया अपने मालक ने। आख्या करवत्र भला, कांशी दे कलवत्र विच कटिया जाना तो चंगा है, पर तू मुख मोड़ नवे ए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये प्यार वालिया दियां बातां हैं।

परम सत्कारयोग सत्संग जीओ, आओ हुण आपां भाई जसवीर सिंह जी पौंटा साहिब वाले पासिओं शब्द कीर्तन सरवण करिए। शब्द भगत कबीर साहब जी का उच्चारण किया होया जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज उपदेश कर रहे हैं। मन ना डिगे तन काहे को डराए, मन नू डराने दी की लोड़ है। मन ना डिगे तन काहे को डराए, चरण कमल चित।

सुत अखर कीने राम नाम एक आखर किनका एक जिस जीव सावे ताकि महिमा गनी न आवे कांखी एक है दर्स तुहारो नानक उन संग मोहे उतारो सुखमनि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम रहो प्रभ कह सिमरन गर्भ न बसे प्रभ कह सिमरन दुख जम न सह प्रभ कह सिमरन काल पर हरे प्रभ कह सिमरन दुश्मन टरे प्रभ सिमरत कछ बिघ्न न लागे प्रभ कह सिमरन अनदिन जागे प्रभ कह सिमरन पौ न व्यापे प्रभ कह सिमरन दुख न संतापे प्रभ का सिमरन साध के संग सर्व निधान नानक हर रंग प्रभ कह सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध प्रभ कह सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध प्रभ कह सिमरन जप तप पूजा प्रभ कह सिमरन बिन सह दूजा प्रभ कह सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभ कह सिमरन दरगह मानी प्रभ कह सिमरन होए सो भला प्रभ कह सिमरन सो फल फला से सिमरे जिने आप सिमराए नानक ताके लागो पाए प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा प्रभ कह सिमरन उदरे मूचा प्रभ कह सिमरन तृष्णा बूझे प्रभ कह सिमरन सब किच सूझे प्रभ कह सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ कह सिमरन पूर्ण आसा प्रभ कह सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद माहे समाए प्रभ जी बसे साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभ को सिमरे से तनवंते प्रभ को सिमरे से पतवंते प्रभ को सिमरे से जन परवान प्रभ को सिमरे से पुरख प्रधान प्रभ को सिमरे से बेमोहताजे प्रभ को सिमरे से सर्व के राजे प्रभ को सिमरे से सुखवासी प्रभ को सिमरे सदा अविनाशी सिमरन ते लागे जिने आप दे आला नानक जन की मंगे रवाला प्रभ को सिमरे से परि उपकारी प्रभ को सिमरे तिन सद बलिहारी प्रभ को सिमरे से मुख सुहावे प्रभ को सिमरे तिन सुख बिहावे प्रभ को सिमरे तिन आत्म जीता प्रभ को सिमरे तिन निर्मल रीता प्रभ को सिमरे तिन आनंद कनेरे प्रभ को सिमरे बसे हर नेरे संत कृपा ते अनदिन जाग नानक सिमरन पूरे भाग प्रभ कह सिमरन कारज पूरे प्रभ कह सिमरन कबू न चूरे प्रभ कह सिमरन हर गुण बानी प्रभ कह सिमरन सहज समानी प्रभ कह सिमरन नेचल आसन प्रभ कह सिमरन कमल विगासन प्रभ कह सिमरन आनंद चुनकार सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार सिमरे से जन जिन को प्रभ मेया नानक तिन जन सरनी पेया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग भेद उपाए हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच चौकुंठ जाते हर सिमरन तारी सब तरना सिमर सिमर हर कारण करना।

इंद्र कुमेर विष्ण शिव पारे गण गण दरब फरिश्ते चारे आखे बार बार कर रहे उचार गुरु नानक तो सद भले हार गुरु नानक दी महिमा आखे ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना सार ना जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। गुरु नानक सब तो वड्डा क्यों है सब दुनिया दे पैगंबरां तो गुरु नानक वड्डा क्यों है क्योंकि गुरु नानक जेडी निम्रता किसे विच नहीं। आखिया हुए जो बहुत पारसा इस जहां में